0: The government enacted Basic Law Article 23 legislation, seizing the opportunities presented by the nation. The chief executive has led delegations to ASEAN, the Middle East, and Central Asia to open up markets. We attract enterprises and investments, reinforced Hong Kong's position as an international hub for high-caliber talents, and promoted Study in Hong Kong brand. This year, the first payload expert from Hong Kong joined the Shenzhou 23 spaceflight mission. Hong Kong remains highly ranked internationally. Opened last year, the Hatau Cooperation Zone has boosted INT development. We are expediting Northern Metropolis development and are formulating the first five-year plan to build a better future together. It's my
1: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on life.
2: Life is for the living. You have to make the most of it.
1: On family.
2: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
1: Life with drugs. No life at all.
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
4: Namaste, Sasri Akal Salam, Kiddo, Jisari Vadia, Apache Pod Vadia. Aaj bhai, 31 July hai 2026. Aur aaj aap sab ke liye ek bahut hi achhi khushkhabri hai. आज सिर्फ हमारे पास एक ही अनाउंसमेंट है, तो मैं अनाउंसमेंट एक जो है वो सुना के आपके नॉनस्टॉप गाने लगा दूंगा, ठीक है? तो आई थिंक हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूजुअली हम जैसे 12-13 गाने लगाते हैं, तो उससे तो ज़्यादा ही लगेंगे आज. तो होपफुली काफ़ी लोगों को आज खुश कर दें हम, क्योंकि कंप्लेंट्स भी बहुत आ रहे हैं कि हमारा गाना नहीं लगाया. बट Like I always say, कि भाई एक घंटे में जितना पॉसिबल है आई डू माई बेस्ट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जी विद आवर फर्स्ट अनाउंसमेंट. दिस इज एडमिशन अरेंजमेंट फॉर नर्सरी क्लासेस इन किंडरगार्टन्स फॉर द 2027 एंड 28 स्कूल ईयर. गवर्नमेंट ने 2017 और 18 स्कूल ईयर से किंडरगार्टन एजुकेशन स्कीम शुरू किया है. इस स्कीम में ज्वाइन किए हुए किंडरगार्टन्स स्कीम KGS सिर्फ उन बच्चों को एडमिट करते हैं जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर किंडरगार्टन एडमिशन, शॉर्ट में उसको RC भी बोलते हैं, या किंडरगार्टन एडमिशन पास और उसका शॉर्ट है AP. अगर आप अपने बच्चे को 2027 और 28 स्कूल ईयर के लिए स्कीम KG में नर्सरी K1 क्लास में डालना चाहते हो, तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक RC या ERC या EAP के लिए अप्लाई करना आप कर सकते हो. अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है, 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन किया करेगा. एप्लीकेशन ऑनलाइन IM स्मार्ट ऐप या EDB की वेबसाइट से आप ले सकते हो. हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स EDB वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी ले सकते हो. कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में EDB के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो. उनका नंबर है 3540-6808 या फिर एक और नंबर है 3540-6811. ओके, तो हो गया जी ये अपना एक जो अनाउंसमेंट है वो ख़त्म. तो अभी मैं जो गाना लगाने वाला हूँ, एक एनोनिमस पर्सन ने रिक्वेस्ट किया है. आज बेसिकली 3-4 लोग हैं जो अनोनिमस हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है. ओके, तो ये पहला रिक्वेस्ट है अपथी बाय रणबीर. एंजॉय द सॉन्ग.

मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ का सम्मान मारने का मजा।